0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: किसी किस्म की तैयारी नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस सब्जेक्ट इनको चाहिए कि ये वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। सिर्फ इस साल 2024 में 2,456 जर्नल अटैक हुए हैं।
4: वफाकी हुकूमत पीटीआई के लॉन्ग मार्च करण जो चैलेंज ॾेई छॾियो। सुद समा वारे वफाकी वज़ीर अताउल्ला तारण चयो आहे त पीटीआई वारा फुसियल आहिनि, जंहिं सबबी हुननि लॉन्ग मार्च मुलतवी कयो आहे। हुननि में हिमत आहे त लॉन्ग मार्च करे ॾेखारनि। पीटीआई दहशतगर्दनि जी सहूलतकार ऐं टीटीपी जी बी टीम आहे। केपी जो वॾो वज़ीर सूबे जो वॾो वज़ीर घटि ऐं टीटीपी जो कमांडर वधीक लॻंदो आहे। पीटीआई वारा दहशतगर्दनि जी मज़म्मत बि नाहिनि कंदा। दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी पीटीआई जी पॉलिसी आहे। पीटीआई जो 27 सितंबर ते इस्लामाबाद ॾांहुं ऐलानियल लॉन्ग मार्च 5 अक्टूबर ताईं मुलतवी करण जो फ़ैसिलो। पीटीआई जी सियासी कमेटी जो पिशावर में अहम इजलास। लॉन्ग मार्च जी तयारियुनि ऐं हिकमत अमली जो जाइज़ो वरितो वियो। ज़रियुनि जो चवण वठण बाद ऐलान कयो वेंदो। वज़ीर सुहेल आफ़रीदी मार्च लाइ न हटंदासीं।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाई रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम अब आपकी खूबसूरती का फैन। वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, हेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ऐं पाकिस्तान विच ओभर में अमन वारनि कोशिशनि खे आसान बणाइण लाइ भरपूर किरदार अदा करे रहियो आहे। कारोबार ऐं सीड़पकारी लाइ ख़ते में डिघे मुदे लाइ अमन इंतिहाई अहम आहे। न्यूयॉर्क में सीड़पकारनि खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान जी मईशत मुस्तहकम थियण बाद तरक्की करे रही आहे। मुल्क में वॾे पैमाने ते सुधारा कया पिया वञनि। मईशत खे डिजिटाइज़ करण, टेक्नोलॉजी ऐं ई गवर्नेंस ते कम तेज़ी सां जारी आहे। पाकिस्तान वटि ज़राअत, मुआदनियात ऐं तवानाई समेत केतिरनि ई शोबनि में सीड़पकारी जा मौक़ा मौजूद आहिनि। बंदरगाहनि ऐं बहरी जहाज़नि वारी सनत में बि सीड़पकारी जा मौक़ा मौजूद आहिनि, जिन मां फ़ाइदो हासिल करे सघिजे थो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6। दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ये ना सिर्फ मुश्किल है, ये सहूलतदार भी है दहशतगर्दों के. जिस तरह मैंने कहा कि जीडीपी की बी टीम और डीपीए की टीम ये नजर आता है, और यही मुश्किल है कि आप ये धरनों से भी भागे. आओ ना, ये पता है तो आप कोई नहीं है, कहीं नहीं है. कॉन्टेक्टिंग तो चाहिए.

वफाकी हुकूमत पीटीआई खे लॉन्ग मार्च करण जो चैलेंज ॾेई छॾियो। सतसमा वारे वफाकी वज़ीर अताउल्ला तारड़ चयो आहे त पीटीआई वारा बुज़िल आहिनि, जंहिं सबबि हुननि लॉन्ग मार्च मुल्तवी कारण पी

चई दहशतगर्दनि जी सहूलतकार ऐं टीटीपी जी जेपी जो वॾो वज़ीर सूबे जो वॾो वज़ीर घटी जो कमांडर वधीक लॻंदो आहे। पीटीआई वारा दहशतगर्दनि जी मज़म्मत बि नाहिनि कंदा। दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी पीटीआई जी पॉलिसी आहे। पीटीआई जो 27 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद ऐलानियल लॉन्ग मार्च फैसलो। पीटीआई जी सियासी कमेटी जो पेशावर में अहम इजलास ऐं हिकमत अमली जो जाइज़ो वरितो वियो। ज़रियन जो चवण आहे त महमूद ख़ान चकसई ऐं अलामा नासिर अब्बास खे इतमाद में वठण बाद ऐलान कयो वेंदो। केपी जे ख़िलाफ़ सियासी कमेटी

0: इस्लामाबाद ईंदड़ वेंदड़ समूरन रस्तन के कंटेनर रखी बंद किया। केपीए पंजाब का ईंदड़ वेंदड़ मोटरवेज से ट्रैफिक मुअत्तल। अटक पुल के लोही कोका कंटेनर रखी मुकम्मल तौर से बंद किया। पंजाब के भी मुख्तलिफ शहर में कंटेनर्स पहुंचाया गया, मुख्तलिफ रोड के बंद किया वो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर महमूद खान चकसई के खत लिखी गालियन की दावत दई छी। जरियन जो चवण है वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के गालियन इलेक्शन कमीशन में मुकर्रियन बाबत खत लिखो है। अपोजिशन लीडर के तर्जमान वज़ीर आज़म के खत मिलने की तस्दीक कर छी। हुकूमत से गालियन तां फिरण जो भी इल्जाम लगाया। न्यूयॉर्क में पाक सऊदी और तुर्किया के परदेही वजीर विच में मुलाकात बाद चिन्ही मुल्कन के आला फौजी सरपरान जो इजलास सऊदी अरब में तलब। सऊदी शहरन ते हमलन बाद पैदा थियल सूरत हाल हिकमत अमली ते गौर कयो वेंदो। पंजाब फौजी अमलदार दिफाई माहिदे तहत सऊदी अरब की मदद करण वारन तरीकन ते गौर कंदा। चिन्ही मुल्कन के परदेही वजीर खत में जटादार अमल लाइ कोशिशों जारी रखने ते भी इतफाक कयो।
1: When did you join army? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
2: Only once.
1: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just shown a crisis which is 10 years old. Yemen crisis, they're saying, look, it's not working. We've just started.
0: ترک پڑھائی وزیر جو مکہ دفاعی معاہدے تے تنقید کرنڑن کے جواب حاکان فیدان امریکہ جے گونے سفیر جیمز جیفری کے مخاطب تھیندے چوتا گزل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر دے اجتماعی دفاع وارو آرٹیکل 5 گھنا بھیرا لاگو تھیو ہے۔ 50 سالن دی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھیو پر کیر بھی ان کے کاغذی شین نہ چاہی رہا ہے۔ नई कायम थियल दिफाई इतिहाद का यमन के 10 साल वाली तकरार जो फौरी हल करने जो मुतालबो मुनासिब वारो न है। पाकिस्तान विच ओभर में अमन वारन कोशिशन के आसान बनाने लाए भरपूर किरदार अदा कर रो है। कारोबार और सीड़पकारी लाए खत्े में डिगे मुद्दे लाए अमन इंतहाई अहम है। न्यूयॉर्क में सीड़पकारन के खिताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहिए था पाकिस्तान की मईशत मुस्तकम थे बाद तरक्की कर रही है। मुल्क में वे पैमाने से सुधारा क्या पा वन मईशत के डिजिटाइज करण टेक्नोलॉजी ए ई गवर्नेंस से कम तेजी से जारी है। पाकिस्तान वट जरात
3: पीक लग गई और लाइफ कुछ ज्यादा ब्लू जोन में ट्रिप्स
0: सीड़पकारी जहा मौकिया मौजूद है जिन में फायदो हासिल कर सकते तो। ईरान आतो चाहे हाने जंग खत्म करने जो फैसलो अमेरिका के करनो है। ईरानी सदर मसूद पेशकियान चयो है ता जेकर इख्तलाफ गालियन जरिए हल थी सगन था त एक बे के कत्ल करण जी अमेरिकी हुकूमत आलमी कानूनन तहत माहिदो करण चाहे थी त तेहरान तैयार है। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राक्षी चयो है ता जेकर अमेरिका कुछ शर्तन ते अमल करे त अपना हुर्मुस के सत मिलो।
4: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई, लबन ते मुर्का विखरियल दिलिन में आ बे आई, चाहत जा चंग वजायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ।

नचे थो मोर छो मन में घटा घनघोर आईया। नचे थो मोर छो मन में घटा घनघोर आईया, करे तू ओड़कू आए वरी मु दिल लगाईया। मोर छो मन में घोर आईया, करे तू ओड़कू वरी मु दिल लगाईया। अचन था दूर ता घुंघरू थी विज वांगुर तू, अचन था दूर ता घुंघरू विज वांगुर तू। कई कोयल इं कूकू वरी का याद लाईया। सरह जी छांव में तोसा मुलाकातियूं कयूं जे मां, सरह जी छांव में तोसा मुलाकातियूं कयूं जे मां। यह उजलत नशीनी थी वयूं जग खां जुदाई आ। खबर ना है त तू छाहीं बटे पुरछाइयूं आहीं, खबर ना है त तू छाहीं बटे पुरछाइयूं आहीं। अंधारी रात आहे ऐं अकेलाई अघाई आ।

हरण आयो तराईअ ते लहे थो सिज लयारनि में। हरण आयो तराईअ ते लहे थो सिज लयारनि में, न धरतीअ ते ख़ुदा तस्वीर बि अहिड़ी बणाई आहे।

उथो ऐं महकदे वारो रखो ही जाम मुंह पारो उथो ऐं महकदे वारो रखो ही जाम मुंह पारो ॾिसो हू सिज साम्हूं महकदे ते उस आई।

पयो आ समरही सारो जड़े आयो संदय वारो टुबी मोती खणी आई वनी वारी सजाई आ। उफक ते तू

इहा का शायरी आहे अटो नाहे लटो नाहे। इहा का शायरी आहे अटो नाहे लटो नाहे, अयाज़ इन ॻाल्हि में आख़िर भला कहिड़ी भलाई आ। नचे थो मोर छो मन में घटा घनघोर आई आ, करे तू ओड़कू आए वरी मूं दिल लगाई आ।

जी दोस्तों अचो त गॾिजी म्यूज़िक मां मज़ो वठूं। मुमताज़ लाशारी जी ख़ूबसूरत आवाज़ में गीत आहे, गुल अहिड़ी तरह था हवा में लुॾनि, को हा थो करे को न थो करे।

0: दोस्तों वक्त थियो आहे हिकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ वापसि वरी विरंदासीं। ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क।
1: It's 9:30 PM. This soundtrack is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए। आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्श ब्यूटी क्रीम, न्यूरो
3: नौशहरो
2: मीरपुर खास
3: लाड़काना
2: सखर
3: गूंज रही है हर जगह पर
2: सिंध की आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क। छा तव्हां जो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण? त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोहतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम BSN, SN सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम, 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम, LHV, CMW, CNA, ख़ास सहूलियतूं, स्कॉलरशिप मौजूद। 2 सालनि जे कोर्सिस में एडमिशन बिल्कुल फ्री, जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया। हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ़्ता आहे। यादि रखो, सीट्स महदूद आहिनि, तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 07115635642 ऐं 03108166111।
4: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: यार मां छा कयां, किथे वञा, घर में वेठो आहियां पर ठीक ही न आहियां। शायद मुझे जिंदगी लाइ का दवाई नाहे ठही।
6: छो भला, छा थियो आहे तोखे? साफ़ साफ़ ॿुधा, मसलो छा आहे?
5: यार हिक मसलो हुजे त ॿुधायां। मुंहिंजी हिते मसलनि जी कतार लॻल आहे, न बुख सही लॻे थी ऐं जे कुझु बि खावां थो त हज़म ई नथो थिए, पेट फूकजी वञे थो।

0: ख़त पेर सुन थी वञनि था ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी। कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां।
1: यार तुंहिंजा घणा न, बस हिकु ई मसलो आहे।
0: हिकु? इहो कीअं?
1: हा, तुंहिंजो मैदो ख़राब आहे। छा तो न ॿुधो आहे, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त। जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी, न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी।
0: त पोइ मां छा कयां?
1: सवलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स। हे कुदरती जुज़नि मां तयार कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुलु ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो। बुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट पुखजण ख़तम, सुस्ती ख़तम, जिस्म में ताक़त ईंदई।
0: वाह यार, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
1: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं, अल नूर दवाखाना रोड़ी। ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616। शिफ़ाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त। छा अव्हां जो गाॾी ख़रीद करण जो इरादो आहे
2: या पंहिंजी पुराणी गाॾी विकिणण चाहियो था? त पोइ अचो बालाज मोटर्स मोरो ते,
1: जिते तव्हां खे मिलनि थियूं टोयोटा, सुज़ुकी, होंडा,
2: किया, स्पोर्टेज ऐं ॿियनि कंपनियुनि जूं मुख़्तलिफ़ गाॾियूं, जिन में जापानी इम्पोर्टेड ऐं हाइब्रिड गाॾियूं पिण शामिल आहिनि।
1: तव्हांजी पसंदि, ज़रूरत ऐं बजट मुताबिक गाॾी जी चूंड में बहितरीन सहकार।
2: बालाज मोटर्स मोरो ते हर क़िस्म जे गाॾियुनि जी ख़रीद ऐं विकिरो जी सहूलियत मौजूदु आहे, मुनासिब अघनि ऐं बहितरीन डील सां।
1: इन खां अलावा पूरे पाकिस्तान में अव्हां जिते बि हुजो पंहिंजी गाॾी बुक कराए सघो था।
2: बालाज मोटर्स नस्त गार्डन सिटी, दादू रोड, मोरो। प्रोप्राइटर अली बख्श खासकेली। अॼु राबितो करियो 03002963322।
3: सचल की सर मस्त धरती,
4: फातिया मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
3: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।